तैनू कोई रस्ते विच मिले, कोई तेरा मित्र, कोई यार, कोई संबंधी, ता तू हाथ जोड़ के उन्हू कहना है नमस्ते। पर कई बारी देखी दे नमस्ते दा मतलब यह होंदा है कि अगले

क्योंकि हरनाकश अपने पुत्र प्रहलाद नु कहंदा सी तू मेरा नाम जप क्योंकि मैं परमेश्वर हां। प्रहलाद कहंदा सी नहीं तू परमेश्वर नहीं, परमेश्वर ओ है जिन्ने तेनू पैदा कीते, जिन्ने तेनू शक्ति दिती है। ता हरनाकश ने प्रहलाद नु पानी विच डोबण दी कोशिश कीती, आग विच साड़न दी कोशिश कीती, फिर खड़ग हाथ विच फड़ ली, प्रहलाद नु मारन लगा, ता थम दे विचों परमेश्वर ने नरसिंह दा रूप धार के हरनाकश दे प्राण लए ते प्रहलाद दी रखिया कीती। नामदेव जी कहंदे ने भाई

नारायण नारायण करना पुत्र नारायण नारायण परमेश्वर का नाम भी अंत वेले जमदूत आए अजामल जेड़ा सी जमदूता नु देख के ते डर गया पुत्र भुल गया ते कहन लगा नारायण बचा नारायण के मनो जमदूत हट गए देवते आए ता नामदेव जी कहंदे ने ओ अजामल पापी भी बैकुंठ नु चला गया भावे सारी उम्र पाप कीते पर एक वाली नाम ले

कमरे में ले गई, सुखे बस्तर दी थी, सेवा की थी, बेनती की थी मां पुरुषा नु के मैं बड़ी पापण, कृपा करो मेरा भी उधार होवे। ता मां पुरुषा ने कहा, ए साडे कुल तोता

जिस वक्त सारे राजे पृथ्वी दी परिक्रमा करन निकलनगे वो मेरी परिक्रमा कर ली पृथ्वी दी परिक्रमा हो जावेगी।

कि अहल्या की शादी गौतम ऋषि नाल हो गई है। इंद्र जिहड़ा सी मन विच कुड़दा होया वापस इंद्रपुरी चला गया। गौतम ऋषि का विआह अहल्या नाल होया, ए अपने टिकाने वापस आ गए। जीवन सुखां दा बतीत होण लग पिया, पर इंद्र मन विच कुड़दा रहा ते सोचदा रहा किसी न

इंद्र देवता अपनी सभा लाके बैठे, कुछ सोच रहे है। ता लिखिया है कि इंद्र नु चिंता विच पिया देख के चंद्रमा भी कोल बैठा सी। चंद्रमा कहन लगा।

केसी कंस मथिन जिनकी है, केसी कंस मथन जिनकी है। भगत नामदेव जी बयान करते हैं कंस कृष्ण भगवान का मामा सी पर बड़ा जुलमी सी। कंस ने अपने पिता उग्रसैन नु कैद किया होया सी, आप राज कर रहा सी और जुलम कर रहा सी और कंस ने ही कृष्ण भगवान नु मारन दे कई यतन किए, पर कृष्ण भगवान ने कंस नु मारिया। कंस मरिया, पापी दा नाश होया। मथुरा दे लोकां ने खुशियां मनाईया कि कृष्ण भगवान ने इस पापी तों साडा खेड़ा छुड़ाया, पर कंस मरिया, मर के मुक्त हो गया क्योंकि कृष्ण भगवान दे हथों मरिया सी, इस करके कंस पापी दा भी उधार।

कृष्ण भगवान ने जीवन दान दिता। कृष्ण भगवान अपने साथियों दे नाल गेंद दे नाल खेड़ दे पए सन। बड़ा समा खेड़द्या बीतिया तां कोल एक छोटा जिहा पानी दा तलाब सी। खेड़द्या खेड़द्या ओ गेंद उस पानी दे विच सुट दित्ती। सारे लोग इकट्ठे हो गए, उस तलाब दे विचो गेंद कड्डी भी नहीं सी जा सकती क्योंकि उत्थे काली नाग दैंद रहिंदा सी, जिहड़ा पानी नूं जहरीला कर छड्डदा सी। कोई भी डंगर कोई पशु पानी पींदा सी उत्थे मर जांदा सी। पर गेंद जदों डिगी ते कृष्ण भगवान कहण लगे, मैं गेंद कढ़ के लियावांगा। सारे लोकां ने रोके, कहण लगे नहीं, इत्थे काली नाग रहिंदा, ओ तेनूं डंक मार के ते खत्म कर देवेगा। लोक रोकदे रह गए पर कृष्ण भगवान ने पानी विच छाल मार दित्ती और देखद्या देखद्या पानी दे विच लोकां दे सामने डुब गए। लोकां ने कहा, कृष्ण डुब गया, पर भगवान किवें डुब सकदे पानी दे थले। नाग नूं जाके धौण तों फड़ लिया। जदों नाग दे नाल युद्ध होया ते काली नाग हार गया और बेनती करन लग पिया, भगवान कृपा कर ते मेरी जान बख्श दे। भगवान कहन लगे, एक शर्त, ए जगह छड़ के चला जा तां तेरी जान मैं बख्शांगा। काली नाग कहन लगा, ए भगवान, जिस तरह तुसी कहोगे मैं करांगा, पर मैनू जानू ना मारियो, मैनू जीवन दान दियो। ता कृष्ण भगवान ने जीवन दान दिता। काली नाग ते सवार होके एक हाथ विच गेंद फड़ी ते कृष्ण भगवान उस पानी तो बाहर आए। जदों लोकां ने देखिया कि कृष्ण भगवान जिंदा ने और काली नाग दे उत्ते सवार ने ते चार सवेरे जय जयकार होण लग पई, तो नामदेव जी कहंदे ने कि भगवान ने कंस पापी नूं मार के मुक्त कीता ते जिहड़ा काली नाग सी दुष्ट उहदी बेनती करन ते उहनूं भी जीवन दान दिता।

प्यारे गुरुदेव सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आपने इस पावन पवित्र शब्द के विच पैरों महला पहला दा शब्द है जो विचार पेश कर रहे हैं, अंधले क्या पाया जग आए। इस पंक्ति तो यह सिद्ध हुंदा है कि इंसान ने इस जन्म दे विच आके कोई खास वस्तु प्राप्त करनी सी, कोई बहुत उचेची चीज इसने हासिल करनी सी। सिर्फ वो इसका मिशन सी, इसका पर्पस। अंदले क्या पाया जग आए, पाप के इत्थे आके कुछ पाना सी। महाराज जी ने पूछिए, सच्चे पातशाह वो वस्तु जो असी पानी सी, वो किथे है? जो असी पानी सी वो वस्तु है किथे? तो गुरु साहिब उसका जवाब देते हैं, कहते हैं

आखण कहण न थमिए, पाया कुछ नहीं, अंदर ही सी, उसका पता भी नहीं लगा, उसने पाया ही नहीं, कुछ भी नहीं पाया। लेकिन गलबात करके देखो, हर बंदा आखण कहण न थमिए, गलबात दे विच ओ थमदा ही नहीं, चुप ही नहीं करता है। कहिंदे सानू ते इस अफसोस दे नाल गुमसुम हो जाना चाहिदा सी कि ये की हो गया साडे नाल, असी कुछ पाण आए सी, और साडे अपने ही पास सी, साडे अपने ही अंदर सी, असी उसनू पाया नहीं है, फिर असी केड़ी गल दा माण करिए। कहिंदे हन

तेरे अपने घर दे विच इतना रंग है, इतना स्वाद है, इतना टेस्ट है, इतनी खुमारी है, इतना सुरूर है, इतनी जॉय है। कहंदे हन की ना माने, उसनु तू मान क्यों नहीं लेंदी, थोड़ा जा यत्न क्यों नहीं कर दी कि तू अपने अंदरली जो दुनिया है कि उसनु भी मान के देख। अपनड़े घर हर रंगो, तेरा अपना घर कहंदे हन, बाहरों तेरी जिंदगी जो है वो बड़ी उदास है, बेचैन है, दुखी है, पर तेनू पता नहीं तेरा अपना घर अपना अंदर एक रंगीन दुनिया दे नाल भरिया पिया है। कहंदे हन कोशिश करके, मेहनत करके, हंबला मार के उस अपने अंदरले जगत नू क्यों नहीं मान लेंदी। अगे आखदे हन कहंदे

कहते कमलिए बाहर की ढूंढ रही है, बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोले सो परम भुलाए। जिहड़ा बाहर टोल रहा है वह परम दे विच भुलिया पिया है, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं। सतगुरु बाबा जी आखते हैं सब कुछ तुहाडे अपने अंदर है, पर ए अंधले इंसान तू ए दस। फिर वापस उही सवाल आता है कि तू अपने अंदरों अंदरले जगत चो अपनी अंदरली दुनिया चो अपने ही अंदरों तू की पाया है। बस इस सवाल का इस विचार दे नाल अगर कोई इंसान बेचैन नहीं हुंदा तो वह बहुत गहरी नींद दे विच सुता पिया है। सुते पाए बंदे नूं जो मर्जी आखी जाए उसते की असर हुंदा है? कोई असर नहीं ना हुंदा। कोई बंदा सुता पिया होवे उसके आले दुआले जो मर्जी कही जाओ उसते कोई असर नहीं हुंदा, उसनूं पता ही नहीं लग्या की किया गया। या फिर कोई इंसान बिल्कुल बेहोश होवे उसनूं कुछ किया जाए तो उसनूं भी पता नहीं चलदा, वो बेहोश है। या कोई इंसान कोमा च होवे तो उसनूं भी कोई पता नहीं चलदा की किया गया है। असी किस स्टेट ऑफ माइंड दे विच हां? अगर ते असी अवेकंड हां, जाग रहे हैं, सुरती च हां, सुते हुए नहीं हैं, तो फिर की सानू एक गल बेचैन नहीं करेगी? कोई साडे अंदर सोच नहीं ले आएगी? कोई साडे अंदर फिक्र नहीं पैदा करेगी कि गुरु नानक देव जी का यह शब्द है, गुरु नानक देव जी महाराज वर्गी हस्ती ये कह रही है कि अंधले क्या पाया जगाए, असि फिर भी राम ना बैठे रहिए? वो तो वह गल हुई जो बाणी च लिखी महाराज ने कि सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, सबे गल्लां जातियां सारियां जान लईयां सुन लईयां फिर चुप कर गए, फिर आराम नाल बैठ गए। फिर भी तलाश ढूंढ खोज क्वेस्ट कोई भी आरंभ ना हो, जिंदगी उसे तरह की ही रही कि असीं अजिहे लोग हां। गुरु बाबा जी गुरु नानक वर्गी शख्सियत यह आख रही है अंधले क्या पाया जागाए, मीन्स कि इस जगत दे विच आके कुछ पाना सी, तुसी वो पाया है या नहीं? फर्दर क्वेश्चन, महाराज जी वो पाउण वाली वस्तु किथे है? वो कहिंदे तुहाडे अपने अंदर है, तुहाडे अपने अंदर है।

हठ मजाहू मैं माणक लगा। कहिंदे हठ मैंने हिरदा, अपने हिरदे दे अंदरों ही एक मैं ज्यूल कहिंदे प्राप्त कीता है, लभ्या है माणक, लभ्या है मुल ना किदा। कहिंदे ए मैं मुल नहीं खरीदया, ए मुल विकदा ही नहीं है, अपने ही अंदर है। पर सतगुरु की गाइडेंस दे नाल, असिस्टेंस दे नाल, सतगुरु की आशीर्वाद दे नाल, उसकी कृपा दे नाल, कहिंदे सतगुरु दा बन के सतगुरु ने मेरे ते कृपा करके मैनू रस्ता समझाया, ढंग समझाया, ते ए माणक, ए ज्यूल, ए ट्रेजर कहिंदे मैं अपने हिरदे दे विचों लभ लिया। कमाल है वो जीवन, तन है वो जीवन, उस जीवन नू निमस्कार। जिन्हां जिन्हां ने कुछ प्राप्त किया उन्होंने अपनी बाणी च दस्या। गुरु अर्जन देव जी आखदे ने पाया लाल रतन मन पाया, अपने मन दे विच ही पा लिया। पाया लाल रतन मन पाया, पाया लाल रतन मन पाया। कहिंदे मैं लाल पा लिया, रतन पा लिया। स्वामी भक्त बाणी दे विच आखदे हन, स्वामी रामानंद जी कहिंदे हन

कितना स्पष्ट किया है कि वो अवेलेबल है, वो पॉसिबल है, प्रोवाइडेड कोई उसको खोजने की कोशिश करे। इम्पॉसिबल नहीं है, जो खोजे सो पावे, वो जरूर पाएगा जो खोज करनी शुरू करेगा। कहते ओ शक्ति, ओ महान मिस्टीरियस वस्तु जो सारे जगत की रचना नु रचती है, बनाती है, सवार दी है, शिंगार दी है, प्रतिपाल दी है, सबना दे अंदर जीवन जो भरती है। कहते ओ अकाल पुरख वाहिगुरु की होंद, ओ अकाल पुरख जो सारे खंडा ब्रह्मंडा दे विच मौजूद है, उतना ही उतना जितना सारे जगत मौजूद है इस देही दे अंदर मौजूद है। जो खोज है सो पाल, जो उसनु खोजन की कोशिश करेगा वो उसनु अवश्य पा लेगा। चौथा नुक्ता यह है, वो उसनु प्राप्त कर लेगा। हुण असी यह देखना है कि असी इस बॉडी दे विचों की खोजया है, की लभ्या है, की पाया है। पंजवा नुक्ता, गुरु महाराज जी आखदे हन ए जिहड़ी देही है एक घोड़ी है, भाव कि यह वहीकल है, अते इस देही दे द्वारा ही, इस ह्यूमन फॉर्म दे द्वारा ही तुसी उस पॉइंट तक पहुंचना है जिथे वो ट्रेजर है। जे ये देही ना होवे, ह्यूमन फॉर्म ना होवे, तो तुसी वो वस्तु तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उस तक पहुंचन दे वास्ते इस देही ने ही तुहाडी हेल्प करनी है। इस तो तुसी कम लेना है। कहिंदे हन एक घोड़ी है, इस उत्ते तुसी ट्रैवल करना है, तुसी इस दे मास्टर हो, तुसी इस दे ड्राइवर हो, तुसी इस दे संचालक हो, तुसी इस नु चलाण वाले हो, अते इस दी लगाम तुहाडे हथ विच होनी चाहीदी है। पर ऐसा ते नहीं है, ऐसा नहीं है। कई दफा जो नहीं बोलना चाहुंदे, जो नहीं बोलना चाहीदा, वो असी बोल जाने हां। वो फिर क्यों बोल हुंदा है? जो नहीं करना चाहिदा वो असी कर जाने हैं, तो जो करना चाहिदा है वो असी नहीं करते। तो असी देही दे मास्टर नहीं हां कि असी इस नु अपनी मर्जी दे नाल जो वर्तीए, असी इस इंस्ट्रूमेंट दे गुलाम बन गए हां, सेंसेस दे गुलाम बन गए हां। इंद्री सबल निबल बबेक बुद्ध कर कल दे कीर्तन च आखी से पंक्ति कि इस दिया इंद्रियां बलशाली हैं, हुण ओ धोई फिर दिया हैं, ओ खिची फिर दिया हैं सानू। ओ गल हो गई है कि सवार नू हुण घोड़ी खिची फिर दी, धोई फिर दी है। ओ सवार दा हाल तुसी देख लो की होएगा। घोड़ी किसे दे पास होवे, ओ उस उत्ते सवार हो जाए, फिर उसनू ए ना पता चले कि घोड़ी ने हुण उसनू किधर लैके जाना है। वो उसको रोकना चाहे वो रुके ना, तो किसे खड्डे च डिग के ही मरेगा। गुरु बाबा जी आखदे हन इस नू अपने कंट्रोल दे अंदर ले आओ, इस दे मास्टर बनो, तो इस नू उस पासे वल जान नू वरतो जिस पासे वल जान नू तुहानू हदायत कीती जांदी है। उस ट्रेजर लैंड नू जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, जिथे खजाना है वो तुहाडे अपने ही अंदर है। कहिंदे हन इस देही दे विच ही है, इस देही तो बिना उसनू पाया नहीं जा सकता। सो इस देही नू विगड़न ना दिओ कदे, इस दे स्वभाव विगड़न ना दिओ, इस दी आदतां विगड़न ना दिओ, इस दी एनर्जी नू वेस्ट ना करो, इस नू गलत आदतां ना पाओ, क्योंकि यह तुहाडी ट्रांसपोर्टेशन। अगला नुक्ता गुरु बाबा जी आखदे हन कि ए जो देही है, छेवां नुक्ता, सब तमाम जूना तो श्रेष्ठ है, उत्तम है, सुपीरियर है। आप जी ने एक पंक्ति सुनाना आज गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों, महाराज जी ने लिखिया है, बहुत ध्यान नाल सुनना। सब माया मोह शरीर हर किया, विच देही मानुख भगत कराई। ये हुण मेरी अर्ज है कि यूएसए दे विच जां होर जिथे भी कीर्तन का मौका मैनू मिलिया है, कोई खास पंक्ति हुंदी है तो मैं वो सारी संगत नू बुलाना हुंदा, सारी संगत उसनू बोले, ताकि दो चार दफा बोलन नाल वो पंक्ति याद भी हो जांदी, क्योंकि वो बहुत ही एक खास पंक्ति हुंदी है। तो आप जी दास तो बाद अद्धी तुक मैं पहला बोलांगा, फिर मेरे कहने तो बाद आप सारे बोले, तो ए पंक्ति आपनू याद हो जाएगी। सब माया मोह
ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀਆ, ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਪਾਣੀ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਉੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਖੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਫਾਰਮਸ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ, ਮਮਤਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਠੱਗੀ ਇਤਆਦ, ਵੈਰ, ਮੇਰ, ਤੇਰ, ਆਪਣਾ, ਬੇਗਾਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਮਤਾ, ਮੋਹ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਜੋ ਈਰਖਾ, ਵੈਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁੱਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁੱਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਹਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਸ ਹਨ, ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜੂਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਵ

नानक सच्चे पातशाह एक जंगल विचों विचर रहे हैं। अकाल पुरख की कुदरत नूं तकदे हां साहब जी मरदाने नूं पुछण लगे मरदानिया मौत नूं कितनी कु नेड़े समझदा है। मरदाने ने आख्या गरीब नवाज सच्चे पातशाह असी अलपग जीव हां आप सरबत

गरीब नवाज दो पैर दिन दे बीत चुके हैं, आने वाले दो पैर पता नहीं वेखांगा कि ना वेखांगा। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई बाला तुम्हें मौत नू दूर समझदा है, मौत इतनी दूर नहीं है। फिर दोहा ने हाथ जोड़े और मेरा देसाई आप कृपा करो आप दसो मौत नू कितनी को नेड़े समझते हो। ता धन गुरु नानक पातशाह जी ने तनाश्री राग विच शब्द उचारण कीता आख्या हम

संगीत भुजंग प्रयाग छंद जागर दंग नागर दंग बागर दंग बाजे गागर दंग गाजे महा गाजे गाजे कागर दंग तीरंग पुकंग कलाकंग कागर दंग काती कटारी कड़ाकंग दिरना दिरना दिरना।

कवि केंद्र सुजान चंद मैं कवि हूं। हिंदुस्तान ते राज है औरंगजेब बादशाह, जिसने ऐलान की

आज तेरे चेहरे तो लगता तू बड़ा खुश, इंज लगता जिवें तेनू कुछ मिले। कवि कह

जितना आप सारे गुरु दरबार सजे हो, इसी तरह संगतां सजियां हैं। संगतां दी भीड़ लग रही वारी वारी, सारे मत्था टेकते हैं, गुरु की आशीष लैके अपनी अपनी जगह बैठते हैं। कवि की वारी आई, कह लगा महाराज मैं कवि हां, सुने है गुरु नानक का घर निरासरिया का आसर है, मिठावियां की थान है। साहब जी कह लगे उस कवि भाई सिखा गुरु नानक के घर आए, गुरु नानक के घर को अपना घर समझ के आए हैं। सिखा जिदा कोई नहीं होता गुरु नानक।

फिर कह रहा महाराज मेरे मन में चैन है। तो सतगुरु जी फिर कहते हैं तेनों आख्या भज जाए।

बड़ी सेवा करता है, पता नहीं कितना आए, बोलता काटा है, सिमरन करता रहता है, पता नहीं कौन है।

सामने योगी और माननीय पवित्र रहे का और जितने माई पाई बैठे हो कोई भी रसना खाली ना रवे वाणी का असल विच सुनना है।

कि अज यह समा आ गया, अज सानू चल के तेरे को आना पे हर को सतार सुजान चाहिए तेरी सेवा के बदले।

भगत कबीर जी परमात्मा नूं मिलन दा एक बड़ा सुचज्जा ते सुंदर रस्ता दसदे ने। कहंदे ने हे भाई जे रब नूं मिलना ते हउमै दा त्याग कर।

पुत्र ने जन्म लिया है ते पुत्र जन्म तो ही पिंगला है, हाथां ते पैरां तो हीण है। समा बीतिया मां गुजर गई, होर समा बीतिया ते इसदा पिता भी गुजर गया। सारे लोग आखन लगे भी ये बच्चा बड़ा ही कर्महीन है, हर कोई नफरत करन लगा। भैण भरा रिश्तेदार सारे बोल कबोल बोलते नहीं, जदों का तू जन्म लिया है ते घर विच घाटा ही घाटा है, तुर नहीं सकदा, हथां ना कुछ कर नहीं सकदा, कोई तेनू किन्ना चिर खवावेगा। रोज बोल कबोल बोलते ने तू बड़ा ही कर्महीन है। अज इस बच्चे कोलों सुनिया ना गया, हर रोज दियां गल्लां सुन के अज तंग आया, आखन लगा मैं तुहाडा दिता नहीं खांदा। ओ प्रभु परमात्मा जिहड़ा सारी सृष्टि नूं चलाउंदा है, मैं वाहिगुरू

दिन बीतया रात बीती फिर दिन आया उस मालक दी बख्शिश होई आज इस जंगल दे विचों ब्रह्मा दे पुत्र श्री नारद जी लंघ रहे ने अचानक बच्चे वल निगाह पई आखन लगे ओए बच्चिया इना उदास ते नाराज क्यों बैठा है प्रभु दा नाम जपया कर प्रभु दा नाम जपण दे नाल सारे दुख ते भुखां दूर हो जांदे ने राम राम जपया कर राम नाम जपण दे नाल संसारी दुख ते भुखां सारियां ही मुक जांदियां ने नारद जी इन्नी गल करके तुर गए ने बच्चे ने कन्ना नाल सुनिया ते हिरदे विच वसा लिया सिमरन विच जुड़ गया ते की सोझी मिलती है किन्ने ही महीने उस प्रभु दे सिमरन विच बैठा रहा राम राम दी जाद सवासा नाल जुड़ गई किन्ने महीने बैठा रहा आज किन्ने महीनिया बाद इस दियां अखां खुलियां ते देखो नाम दियां बरकतां की तक रहा है इस दे हाथ ते पैर ठीक हो गए हुण के पिंगला नहीं दे रहा आज जदों इसने कुछ तकिया है प्रभु तू किड्डा दयालु है तू किड्डा कृपालु है सुनिया सी तू रहमतां दा मुजस्मा है आज ते तेरियां बख्शां आज ते तेरे कौतक अखी तक लैने।

जेदे पल्ले नाम है दुनिया दे सुख ओदे मगर मगर टुरे फिरदे ने। सतगुरु बाणी विच आख रहे ने लोक पर लोक दे सुख ओदे मगर टुर पैंदे ने। जेड़ा हिरदे विच नाम वसाउंदा है अज की होया राजा बिरध होया ते ए जवान होया राजे ने इस बच्चे नू राज गद्दी ते बिठा दिता है। जेड़ी दुनिया सारी इस दे नाल नफरत कर दी सी पिंड नगरी वाले भैन भरा जेडे एडे धक्के मारदे सन अज सारे इस नू एक बार मिलन दी खातर दरवाजे ते खलोते तरले कर रहे ने। जिस नीच को कोई ना जाने नाम जपत ओ चौं कुंट माने। ऐवें बाबा जी ने बाणी विच आख्या नाम विच पाबरियां ही एडियां ने

ते गनका ने दरवाजा खोलिया, बाबा जी अंदर लांग आओ, अंदर लांग आओ। महापुरुष दरवाजे विच खलोते ने, नस के अंदर गए। सतपुरख आए ने सेवा कर लवा, नस के गई ते दूध का गिलास लेके आई, बाबा जी छक लवो। महापुरुष आखन लगे, बच्ची तेरा काम की है, की किरत कर दी है? बाबा जी मेरा धंधा बहुत माड़ा है, मैं कर्मा दी मारी बेसवा। आखन लगे, बच्ची आ तेरे हथां दा दुध असा ने नहीं पीना। इन्नी गल आखी ते गनका दे अखां विचों हंजू आए, क्यों नहीं पीना? तेरा कर्म माड़ा है, जे साड़ी एक गल मनेगी ते तां ए दुध दा गिलास मैं पीवांगा। महापुरुष दुनिया नू तारन वास्ते आंदे ने, बाबा जी तुहाडी हर एक गल मनांगी। महापुरशां दे कोल एक पिंजरे दे

राम बोलेंगी ये भी बोलेगा, इनू राम राम सुखाया कर, गल मनेगी। हाथ जोड़ के आखन लगी, बाबा जी इस तोते नू मैं राम राम सुखावा। महापुरुषां ने दुध सकिया, हुण महापुरुषां दे बचन तोते नू हर रोज राम राम सिखाउंदी है, हर रोज किन्ना चिर राम राम करदी है। ते एक दिन इहो जिहां बख्शां होईयां, राम नाम इहो जिहा इहदे सवासां नाल जुड़िया, तोते दा उधार ते होना ही सी, इहदी रसना ते राम सदा वास्ते वस गया। हर वेले राम राम राम ते इतिहास विचों सोझी मिलदी है, एडी वड्डी पापण ते राम नाम दियां बख्शां गई स्वर्गां। राम नाम ने तार दिता, लोक परलोक सवार दिते, स्वर्गां दे दरवाजे इस लई सदा वास्ते खुल गए। ते ए है प्रभु दे नाम दी महिमा। सतगुरु बाणी विच सोझी दे रहे ने, जपहीन तपहीन कुलहीन कर्महीन नामे के स्वामी ते उतरे। किड्डा भी गुनाहगार है, किड्डा भी पापी है, किड्डा भी कर्महीन है, प्रभु दा नाम जपेगा, राम नाम जपेगा, वाहेगुरु अल्लाह।

परम सरकार को शासन करते। एक पवित्र शब्द धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का उच्चारण किया हुआ। इस शब्द के विच साहब जी उपदेश करते हैं, जैसे एक आग दे चुल्हे दे विच लकड़ा बालिए अग बालिए लकड़ा नू हिलाइए ता अग दे छोटे छोटे चंगियाड़े उतां नू उड़दे। अग दे कोई है पर चंगियाड़े कितने उड़ते हैं। जैसे एक आग दे जिस तरह एक आग तो जैसे एक आग दे कनुका कोट कोट कहते ने करोड़।

कोट करोड़। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, नदी ते एको ही है, पानी ते एको ही है, पर पानी दिया लहरा करोड़ा उठ दिया है। पानी एको ही है पर लहर जद उठ दिए ते असी कह देने हैं नदी विच पानी दी लहर उठी, कह देने हैं लहर उठ दिया पईयां ने, लहर है ते पानी विच है भी पानी, पर एक नाम पै गया पानी दी लहर। पर सा संगत ओ लहर है ता पानी, पानी तो वख नहीं। आखो सतनाम से जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सबे पान ही कहाएंगे, जिस तरह नदी विच पानी दिया लहरा उठ दिया ने, उन्हां पानी दिया लहरा नू असी पानी ही आखांगे पानी।

इस तरह अग कोई है। अग दे विच्चों अग दे चंगियाड़े उठते हैं फिर अग विच मिल जाते। जिस तरह मिट्टी है, मिट्टी उठती है फिर मिट्टी दे विच मिल जाती। जिस तरह पानी, पानी दे विच लहर उठती है फिर पानी दे विच ही समा जाती है। इसी तरह तैसे विश्व रूप दे, इसी तरह उस परमात्मा तो यह सारी दुनिया पैदा हुई, अंत सारे ओदे विच समा जाएंगे। चाहे कोई किसी भी देश का रहन वाला, संसार के किसी भी कोने विच रहन वाला, किसी भी जात का, किसी भी मजहब नूं मनण वाला, साहब जी कहते हैं यह सारे एक परमात्मा तो पैदा हुए हैं, अंत सारे ओदे विच समा जाएंगे।

और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के साहबजादे इस शहर विच आए हैं, जिथे उन्हां कदम तरे उस शहर पवित्र हो गया। पर दूसरे पासे बदकिस्मती शहर दे इस वास्ते आखदा कि माता गुजरी और छोटे साहबजादियां नूं सरहद दे नवाब ने ठंडे बुरज विच कैद कीता। कैद देखदा ते मन रोंदा है, दिल रोंदा है, अखां रोंदियां ने, पर जे माता जी और साहबजादियां दे चरणां नूं देखां ते शहर ते वड्डे लगा पलिए लोके, हर पासे कर्फ्यू मार्शल लाल लगा। माता गुजरी जी और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के छोटे साहबजादे ठंडे बुरज विच कैद हैं। बुरज की है? ऊंचा सारा एक मकान बने हैं सौखी समझ वास्ते। जगला है, एक पास्यों हवा आती है, दूसरे पासे निकल जाती है। इस ठंडे बुरज विच माता गुजरी और साहबजादे कैद किए गए। मोती राम मेहरा कहन लगा, पलिए लोके, मेरा चित करता है मैं साहबजादियां नूं और माता गुजरी नूं दुध पिया के आवां। घरवाली ने कहा, पत्ता पत्ता ते वैरी है, ठंडे बुरज के दुआले बड़ा सख्त पहरा है, उत्थे कोई नहीं जा सकता है। जे तुसी गए ते फिर जीवंदे वापस नहीं आओगे, जे तुहानू कुछ हो गया फिर मेरा ते ना बच्चियां दा की होवेगा। ये दोनों जी बैठे आपस विच ये गल्लां पै करते हैं। औसा संगत

द्रोणाचार्य है उदी ये विद्या दे के उन्हों थापड़ा देते उन्हों असीस देंदे कहंदे बेटा एकलव तू बड़ा महान है मैं तेरी विद्या तो बड़ा खुश हां तेरी चंगे विद्या तेरी चंगी विद्या ही मेरी दक्षिणा है मेरी बेटा है पर नहीं द्रोणाचार्य गुरु हो गए किटा वटा त्रो किटा वटा जुलम कर रहे हैं एकलव देना कहन लगे एकलव मेरी बेटा एकलव कहन लगा जो आ गया पर द्रोणाचार्य आज गुरु हो गए किटा वटा जुलम कीता कहन लगा एकलव मेरी बेटा ये है अपना अंगूठा कट के दे दे आंख सतनाम श्री अपना अंगूठा कट के दे दे एकलव ने एक मिनट भी ना लाया उस वेले छुरे दे नाल अपना अंगूठा कट के द्रोणाचार्य दे

any number. And something surrounding you. जिसने ए मंग मंग ली है उसदिया सारिया मंगा पूरी और कड़ी मंग नानक को ब्रह्म मया कर सच देवो क्योंकि सच सदा रहने वाली है दूर बिखुटे नानका दूर में हो गया पूरे पदार्थ पहले भी नहीं रहे तो इस वास्ते मामिल पूर्ण विपुटे नाम का औरंग सच और सिर दी गई अरदास पातशाह मैं सच्ची वस्तु जरा सच नाल जुड़ गए उसका जीवन भी सच्चा उसके कर्म भी सच्चे जिसके कर्म सच्चे हैं उस इंसान दुनिया सबका आधे रस्ते चंगे रस्ते पे सच्चे मार्ग पे करने वाला इंसान सच्चे कर्म करने वाले भजन फरमावे सच्चे मार्ग चल देना उस तत् करे सच जरा सच पे बोलते और दुध पे जरा झूठ पे बोलता है और जहर पे सच बोलन जेडा पुन कोई नहीं झूठ बोल जेडा पाप सच पुराना ना नाम ना दे तो सच की है उस वाहिगुरु का नाम उस वाहिगुरु का पवित्र नाम नाम की वाहिगुरु जिस नाम ने उस नामी की प्राप्ति कराई वो नाम केड़ा है वाहिगुरु वाहिगुरु गुरमंत्र है जब हमें वाहिगुरु गुरमंत्र है जब हमें उस वाहिगुरु को मिलने वास्ते साधन वाहिगुरु जिस तरह अंब का बूटा वह नाम भी अंब और जड़ा उसके उत्ते फल लगा है वह नाम भी अंब और सानू के अंब चाहिए फल तो फल की प्राप्ति वास्ते पहला अंब बूटा नहीं फिर उसकी राखी करनी पैदी संभाल करनी पैदी सामू जरा अम फल है वह प्राप्त किसी तरीके उस वाहगुरु की प्राप्ति का साधन ये वाहगुरु शब्द वाहगुरु गुरु मंत्र है जब हम ये गुरु का मंत्र बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज वचन करते सन भाई ये गुरमंत्र जो वाहिगुरु है ये दरगाही टिकट दुनियावी सफर करना होने ता भी टिकट की जो टिकट तो बगैर सफर नहीं हो सकता और इसी तरह उस दरगाह जाने वास्ते मार्ग तक पहुंचने वास्ते प्लीज सामने

मार्ग से एक दिन सुन रहे, गरीब में भी सुन रहे, अमीर में भी सुन रहे, कंगाल में भी सुन रहे, राजे महाराजे भी सुन रहे। तो कौन अपना महाराज अंतर थे, डरते ही रह गए, कारण भी ये थे, मकान भी ये थे, जमीना भी ये थे, पुत्र धियां भी साथ नहीं देना, कई वस्तु मेरे नाल जाएगी तो हजूर हो

जित जाए बे मेरा सतगुरु। अज दा दिन महान दिन है क्योंकि अज दे दिन दूसरे गुरु नानक गुरु अंगद देव जी ते वाकई कमाल है गुरु अंगद देव जी दा महान सेवा है। गुरु नानक देव जी चरणा दे विच रह करके इन्नी सेवा कीती कि एक दिन गुरु नानक देव जी ने प्रसन्न हो करके ओ इलाही जोत जो गुरु नानक देव जी इस संसार दे विच लै करके आए सन ओ गुरु अंगद देव जी नूं दित्ती। परीक्षा भी बड़ी हुई ते हर कसौटी दे उत्ते गुरु अंगद देव जी पूरे उतरते रहे। एक दिन दी छोटी जी साखी मैं आप जी दे सामने रखन लगे। कुछ गल्लां इस तरह हुंदियां हन कि कई वारी गुरु देखदा है मेरा सेवक किन्ना पक्का। वाकई पक्का है कि कच्चा है हाले क्योंकि कसौटी दे उत्ते उसनु तोल रहे हन। परमासी दा दीवान है। बड़ी ही संगतां गुरु महाराज गुरु नानक देव दे चरणा दे विच पिंडां दे विचों शहरां दे विचों चल करके पुजियां हन क्योंकि पूर्णमासी दा दीवान लगदा है। बड़ा इकट्ठ होया होया बरसात लगी हुई है। लंगर दा कोई प्रबंध नहीं हो सके। संगत दे विच हुण बच्चे भी हन जो कि फुक दे मारे बिलाप कर रहे हन ते साथ संगत कई सेवादार ने जाकर के आख्या सच्चे पातशाह अज दो दिन हो गए लंगर दा तां कोई प्रबंध नहीं हो सकिया क्योंकि बरसात इन्नी पै रही है कि लंगर दा प्रबंध किस तरह किया जावे। बच्चे बिचारे भूखे विलाप कर रहे हन ते कुछ कृपा करो आप जी ते साध संगत नाल बैठे हन गुरु नानक देव जी दे दो साहिबजादे बाबा श्री चंद जी बाबा लक्ष्मी दास ते इन्हां नूं इशारा कीता सारी साध संगत बैठी हुई है कि जाओ ए जिहड़ा पेड़ है ना सामने इस दे उत्ते चढ़ करके हलूणा दे उस नूं हिलाओ इस दे विचों अनेक पदार्थ डिगणगे ते जदों ये पदार्थ डिगणगे संगत इस नूं छक करके संगतां दी तृप्ति हो जाएगी भोजन मिल जाएगा। ते साध संगत बाबा श्री चंद ने आख्या ये इस तरह भी कदे होंदा मैं पेड़ ते चढ़ करके हिलूणा देवां ते पदार्थ डिगण ये तो हो ही नहीं सकता। पेड़ दे विच्चों किथे पदार्थ आए हन मैं नहीं चढ़दा साफ इनकार कर दिता। दूजा बचन होया बाबा लक्ष्मी दास जी दे नाल उन्हां नूं आख्या भई तुसी कृपा करो इस पेड़ दे उत्ते चढ़ करके इस नूं हिलाओ इस दे विच्चों अनेक पदार्थ डिगणगे जिस नूं छक करके संतां दी तृप्ति हो जाएगी। ते देखिया उन्हां ने भी साफ इनकार कर दिता कहिंदे इह हो ही नहीं सकदा कि पेड़ दे विचों पदार्थ डिगण पेड़ दे विचों लंगर मिले लोकां नूं छकण वास्ते हो सकदा उन्हां ने मना कर दिता। तीजे हन सेवादार उत्ते सेवा करदे हन भाई लैणा जी आखो सतनाम श्री वाहिगुरु बहुत पक्के सेवादार हन। जदों इशारा कीता भाई लैणा जी तुसी कृपा करो पेड़ दे उत्ते चढ़ करके इस नूं हलूणा दिओ ते साध संगत सत बचन कह करके पेड़ दे उत्ते चढ़ गए। ए पुछा नहीं ए मन दे विच विचार ही नहीं किता कदे हो सकदा कि पेड़ दे विचों पदार्थ डिगण ते संगतां दी छक करके तृप्ति हो जावे ए बचन ही नहीं किता ते सत बचन आ करके पेड़ दे उत्ते चढ़ गए। हुक्म मनिए होवे प्रमाण ता खसमे का महल पाए सी ते फेर कसवटी दे उत्ते पूरे उतरे साहिबजादे बैठे रहे अनेक एहो जी परीक्षा लई ते साध संगत जो देखिया कि ए सेवक पूरा है पूरा नहीं है कच्चा नहीं है ए पूरा है ते साध संगत उस वेले ही गुरु अंगद देव जी भाई लहणा जी तो अंगद बना दिता। आओ अज उना महान गुरु अंगद देव जी दा
अवतार पुरब दिहाड़ा है। आप सारे मिल करके यह जो है तुक सारे मिल

ज्ञान सतगुर सब भुखा बिना करो गुरपास हम कीरे करम सतगुर शरणाई कर दया नाम प्रयास मेरे मीत गुरुदेव मोका राम नाम प्रयास गुरमत नाम मेरा प्राण सहाय हर कीरत हमरी रहरास रहाओ हर जन के वड़ पाग वड़ेरे जन हर हर सरदार प्यास हर हर नाम मिले प्रतस मिल संगत गुण प्रयास जन हर हर हर रस नाम न पाया दे भावहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जन हरजन सतगुर संगत पाई तिन तौर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत्संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रयास राग गूजरी महला पंजा काए रे मन चितवें उद्दम

चौथा सौ पुरुष एक ओंकार सदगुर प्रसाद सौ पुरुष निरंजन हर पुरुष निरंजन हर अगमागम पार सब ध्याव है सब ध्याव है तुद जी हर सच्चे सृजनहार सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातार हर ध्याव संतो जी सब दुख विसारण हार हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समान एक दाते एक पेहारी जी सब तेरे चोज विडान तू आपे दाता आपे पोता जी हों तुझ बिन अवर न जान तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आगम खान जो सेव है जो सेव है तुम्हें जन नानक तन कुर्बान हर त्याव है हर त्याव है तुझ जी से जन जग में सुखवासी से मुक्त भये जनार त्यारी तन टूटी जन की फांसी जन निर्भो जन हर निर्भो त्यारी तन का भाव सब गवासी जन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जनार त्यारी जन नानक पिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंत तेरे भगत सलाम तुद जी हर अनेक अनेक नमता तेरी अंकर पूजा जी तप तप जप बेअंत तेरे अनेक पढ़े बहु सिमृत शास्त्र जी कर किरिया खड़कन गणता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर पलवंता तू आद पुरख ब्रह्म प्रकर्ता जी बुद्ध जे वड़े वरण कोई तू जो जो एको सदा सदा तू एको जी तू निचल करता सोई खुद आपे भावे सोई वरत जी तू आपे करे सोई खुद आपे सिख सौ पाई जी खुद आपे सिरज सब कोई जन नानक मंगावे करते के जी जो सब सहका जान होई आसा महला चौथा तू करता सत्यार मेरा साई जो तो भावे सोई थीसी

सब लोग सवार नमस्कार है पाए हमार जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जचन उपजायो आदि अंत कै उतार सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो शत्रुन को पलनो बद कियो कट कट के अंतर की जान भले बुरे की पीर पछानत चीटी दे कुंजर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उद कर करा करतार प्रजा धरत तब दे अपार जब आ कर कर दो कबू तुम्हें मृत दे तर सबू जेते बदन से सब धार आप अपनी बूझ उचार तुम सभी ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिला अनाद असंभ

चेती तुमरा लखन जाए पसारा एकद सजा प्रथम संसार एक रूपा अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कही पुप्पा अंडज जेरज सेतज की उत भुज खान बहुर रसदीनी कहू फूल राजा होए बैठा कहू सिमट भयो शंकर कैठा सगरी सिद्ध खाए अचम भव आद जुगाद स्वरूप स्वं भव अब रचा मेरी तुम करो सिख उबार आसिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रन कहता ये अस्त हो जा तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तो हो मरे पुरख जवन पर परे तिहारे तिनके तुम संकट सवटारे जो कल को एक बार ते है ताके काल नित में ऐ है रचा होए ताए सब काल दुष्ट अरिष्ट टड़े तत्काल कृपा दृष्टान जाहे निहरो ताके ताप तनक मोहरो रिद्ध सिद्ध कन्नु सब होई दुष्ट छा छो सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा पाल फाते ताए उबारा जिन नर नाम तिहारो का दारिद दुष्ट दोग तेरा खड़ग केता मैं शरण तिहारी आपा दे लियो उबारी सर्व ठोर नु हो सहाय दुष्ट दोग ते लियो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुभ रता

बावली जिथे तू समर्थ जिथे कोई नाही उथे तेरी रख अग्नि उदर माए सुन के जम के तू नाए तेरे छट जाए भौजल बिखमसगा हो गुर शब्दी पार पाए जिन कौल की प्यास अमृत से खाए कल में ओ पुन गुण गोविंद गाए सब सैनो कृपाल संभाले साहे जिसका कोई न जाए जे आवे तुत आए श्लोक महला पंजा अंतर गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ जितरी सतगुर पेखाना श्रवणी सुनना गुरनाओ सतगुर सेती रत्या दरगा पाई है ठाओ कौ नानक कृपा करे जसनो ए वत दे जग में।

जेड़ दा महीना तत्ता तुप तत्ती रेत तत्ती मुगल सरकार तत्ती पर ठंडे कौन हन शांति दे पुंज निमरता दे सागर गंभीरता दे सोमे गुरबाणी दे बोहित गुरमत दे स्कॉलर पंजवे गुरु नानक शहीदां दे सिरताज पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। किसे कवि ने ठीक ही किया है, इना अखा ने कई पतंगिया नू उंज ता लाटा ते सड़दिया देखिया है, मैं कई वेर चुप किते गुंचिया नू देगा विच भी कढ़दिया देखिया है, तत्ती रेत ते कई नमाजिया नू मैं कलमा यारदा पढ़दिया देखिया है, पर मैं की दसा अर्जन देव ताई किदा अग उते सड़दिया देखिया है। हजरत मियां मीर ईरान दे रहन वाला जो उस वक्त लाहौर विच ही रह रहा सी, जदों उस नू किसे ने जाके दसिया ओए फकरा जाके अपने यार दी हालत ना देख, ता इस सुन के साईं मियां मीर दौड़िया आया, आके की देखदा है कि गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी ते बैठे हुए हन, सारा शरीर छले छले होया पया है, पर मस्तक डलका मारिया है ते मुखों की कह रहे हन, तेरा किया मीठा लागे। ए सब कुछ देख के साईं मियां मीर ने गुरु साहिब नू सवाल कीता। मियां मीर ने पुछया सतगुरां नू, तवी तपदी वांग तंदूर दाता और तन भर दिता सारा शालिया ने जिवें वेल ते गुच्छे अंगूर दाता, कोमल कलियां तो कूड़ा रेशमा तो जिसम ढलके होया मनूर दाता, और कल तख्त उत्ते ते अज तवी उत्ते एक ही खेल रचाए रब्बी नूर दाता, ते नाल ही हाथ जोड़ के बेनती कीती, महाराज मेरे कोलों तसीहे जरे नहीं जांदे, मैनू हुक्म दियो मैं अज ही लाहौर ते दिल्ली दी इट नाल इट खड़का देंगा। तां गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बड़ी धीरता नाल पुछया, साई जी ए शक्तियां कित्थों प्राप्त कीतियां? तां जवाब मिलिया, जी हजूर कोलों। तां गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया, इन्हां शक्तियां नूं असीं वी तां वरत सकदे सी, पर शक्ति वरतना परमात्मा दे विरुद्ध बगावत करना है। साडे दो निशाने सन, असीं इस सृष्टि उपर दो नीहां रखनियां सन। अगों हस के सतगुरु कह लगे, तू फकरा रमज पछाणी नहीं, मैं तेरे दिल दी जान लई, तू मेरे दिल दी जानी नहीं, मैं रखनियां है सन दो नीहां, एक शहीदी दी एक हरमंदर दी, ओ तू रखती ए मैं रखूं, ए चाह है मेरे अंदर दी।